नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 27 मई 2026 बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:23 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:17 पर।

जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब भ्रम मिटेंगे। भ्रम तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट जाता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक मुकेश पर आधारित है। पेश करेंगी RJ किरनी।

पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज हम इस कार्यक्रम का एक और अंक लेकर आपके सामने हाजिर है। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज हम बात करेंगे महान गायक मुकेश की, उनके अनमोल गीतों की जो आज भी दिलों को छू जाते हैं। उनके गीत सुनने के बाद पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर उनके गीतों के साथ।

22 जुलाई 1923 को लुधियाना के जोरावर चंद माथुर और चांद्रानी के घर जन्म हुआ मुकेश चंद माथुर का। बड़ी बहन संगीत की शिक्षा ले रही थी और मुकेश बड़े चाव से सुर के खेल में मगन हो गई। मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन मुकेश की दिली ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेता एंट्री मारे। 2 साल तक जब सपनों के शहर मुंबई का रुख किया तो उन्होंने बतौर एक्टर सिंगर ब्रेक मिला। 1941 में आई फिल्म निर्दोष। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था, लेकिन इस आवाज के जादूगर का जादू KL सहगल साहब पर चल गया। मुकेश के गाने को सुन के KL सहगल भी दुविधा में पड़ गए। 40 के दशक में मुकेश का अपना प्लेबैक सिंगिंग स्टाइल था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपरहिट गाने दे रही थी और उस दौर में मुकेश की आवाज में सबसे ज्यादा गीत फिल्माए गए दिलीप कुमार पर। 50 का दशक मुकेश को एक नई पहचान दे गया। उन्हें शो में राजकपूर की आवाज कहा जाने लगा। कई इंटरव्यू में खुद राजकपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा है कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। राजकपूर और मुकेश की दोस्ती स्टूडियो तक ही नहीं थी, मुश्किल दौर में राजकपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे।

60 के दशक में मुकेश का करियर अपने चरम पर था और अब मुकेश ने अपनी गायकी में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे। उस वक्त के अभिनेताओं के मुताबिक उनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त और मनोज कुमार के लिए गाए गीत। 70 के दशक का आगाज मुकेश ने जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त हर बड़े स्टार की आवाज बन गए थे मुकेश। साल 1970 में मुकेश की मनोज कुमार की फिल्म पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर मिला और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अब मुकेश ज्यादातर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया, लेकिन नेशनल अवार्ड का मतलब 51 वर्ष के हो चुके मुकेश के लिए रिटायरमेंट तो कतई नहीं था। मुकेश विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे नए अभिनेताओं के लिए भी गा रहे थे। 70 का दशक भी मुकेश की गायकी का कायल रहा। कैसे बुलाए जा सकते हैं, धर्म कर्म का एक दिन बिक जाएगा गीत, फिल्म आनंद और अमर अकबर एंथनी के वो बेहतरीन नगमे। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के इस टाइटल सॉन्ग ने मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर मिला और इस गाने ने उनके करियर में फिर से एक नई जान फूंक दी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। साल 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि राज कपूर के जिगरी यार मुकेश को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने, नासीखी होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शुरुआत में राज कपूर की आवाज बने मुकेश, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस छवि से बाहर निकल मुकेश ने प्लेबैक सिंगिंग का एक नया इतिहास लिखा। 40 साल लंबी करियर में अपने दौर के हर सुपरस्टार के लिए मुकेश ने गाना गाया। मुकेश ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों के लिए गीत गाए। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज बने। मुकेश की आवाज का जादू लोगों पर कैसा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक लड़की बीमार हो गई। वो अपनी माँ से बोली कि अगर मुकेश आकर उसे अपना गाना सुनाए तो वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से इस बात का पता चलने पर मुकेश तुरंत उस लड़की से मिलने पहुंचे और गाना सुनाया।

एक बार मुकेश विदेश दौरे पर थे। उस समय देश के जाने माने संगीत निर्देशकों की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को एक गीत रिकॉर्ड करना था। उन्होंने सोचा कि मुकेश तो इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं, इसलिए फिलहाल किसी और से ही उस गीत को रिकॉर्ड करवाया जाए। तब उन्होंने उस गीत को मनहर उदास से रिकॉर्ड करवाया। जब मुकेश विदेश दौरे से लौटे तो कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें उस गाने को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में बुलाया। जब मनहर उदास का गाया हुआ गाना मुकेश ने सुना तो उन्होंने उस गीत को दोबारा गाने से मना कर दिया। हिंदी फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने जब अपनी फिल्म आग से शुरुआत की तो उस फिल्म में कुछ गीत मुकेश ने भी गाए। यही से राज कपूर और मुकेश में गहरी दोस्ती हो गई थी। राज कपूर खुद कहा करते थे कि शरीर वो है तो उनकी आवाज़ मुकेश है। जब राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर के लिए फिल्म बॉबी बना रहे थे तो राज कपूर चाहते थे कि इस फिल्म के गाने मुकेश गाए, लेकिन मुकेश ने उस फिल्म में गीत गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चिंटू की उम्र अभी बहुत कम है, उसके लिए एक नई आवाज़ की ज़रूरत है। मुकेश ने बताया कि वो एक गायक को जानते हैं जो इस फिल्म के गीत भली भांति गा सकता है। मुकेश ने राज कपूर को शैलेंद्र सिंह का नाम सुझाया। फिल्म के गीत शैलेंद्र सिंह ने गाए और हिट भी हुए। इसके लिए राज कपूर ने मुकेश की पारखी नज़र की भी खूब तारीफ की।

एक कामयाब गायक होने के बावजूद मुकेश के बारे में लोगों की एक राय बन गई थी कि वो शास्त्रीय गीत नहीं गा सकते, लेकिन जब उन्होंने चंदन सा बदन, चंचल चितवन गाया तो शास्त्रीय गीतों पर उनकी बुराई करने वाले सभी लोगों का उन्होंने मुंह बंद कर दिया। मुकेश ने 200 से ज़्यादा फिल्मों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने हर तरीके के गाने गाए, लेकिन उन्हें दर्द भरे गीतों से अधिक पहचान मिली। मुकेश ने अगर जिंदा हूँ मैं इस तरह से या मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा जैसे कई गीतों को अपनी आवाज़ दी। मुकेश फिल्मफेयर पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उस समय वो गा रहे थे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुकेश ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमसे टकराती है। पल भर के लिए यादों की पोटली टटोलती है और गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है।

तो दोस्तों, ये था मुकेश जी के अनमोल गीतों और उनकी दिलचस्प कहानियों से भरा एक एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। मुकेश जी की गीतों में वो मैजिक है जो दिल को छू जाता है। उनकी आवाज़ और उनके गीत हमेशा हमारे दिल के करीब होते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए सिंगर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 5। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक मुकेश पर, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेश।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: Mm-hmm.

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: एक ना

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। तो लघु कथाओं की श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई लघु कथा, जिसका शीर्षक है रिश्तों में नफा नुकसान। तो आइए चलते हैं लघु कथा की ओर। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई मिली। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक तरबूज दे रही है ये, और 10 रुपए किलो पड़ा। अरे बाजार से तो भी तो तुम 20 रुपए किलो ले ही आती हो। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर लड़की से बोली, भाई 30 रुपए का एक देना हो तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ, ये देखो तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे को एक तरफ इशारा करते हुए बताया। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई और फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाला और बोली, क्या नाम है तुम्हारा भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई, तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर ही बिठा दो गाड़ी में, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा क्या? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। अब 5 किलो का तरबूज गोलू संभाल नहीं पाया, तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिर कर फूट जाने से लड़का रोने लग गया। लड़की उसे पुचकारती हुई बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा ले आती हूँ। फिर वो दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींच लिया और खिड़की बंद कर दी। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वो तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे ही मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए लिया। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा कि नहीं, पैसे तो मैं नहीं लूंगी। विनोद भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया और आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान देखा नहीं जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बना दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर क्या हुआ तुम्हारे भाई को? विनोद बोला। वो बोली, जब वो 2 साल का था ना, उसे रात में बुखार हुआ था। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग में से एक पायजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी, और लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना ना, तो मैं तुम्हारी माँ जैसी ना हुई, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रख दी। रख ले, जब भी पहनेगी तो हम सबकी बहुत याद आएगी। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए कितने हथकंडे अपना रही थी, अब कुछ ही देर में इतनी बदल गई। जो 3,000 रुपए की पाजेब उस लड़की को दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया आप वो जो मेन मार्केट वाली दुकान है ना, वो आप ले लें, मंडी वाली दुकान फिर ले छोड़ दें, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ही ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा रे छोटे। विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई के रोने की आवाज सुनाई थी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या बड़े भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो मैं सब कुछ तुझे ही ना दे देता, अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा कर लेंगे। इतनी कड़वी कड़वाहट और इतने मीठे बोल ना जाने आपस में कहां से मिल गए। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे ना, वो आज एक दूसरे को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। जानते हैं इसके पीछे मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है, और लेखक कहना क्या चाहता है? त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। और एक बात और कहूं आपसे, ये कहानी अपने किसी जान पहचान वाले परिचित को भेज दीजिएगा। हो सकता है इससे उसके बहुत सारे बिगड़े हुए रिश्ते फिर से बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: تہو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। लल्लेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत, कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
5: नमस्कार, आज का जो ललवाक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इनसाइट से भरा हुआ ललवाक है ललदेव का, और हमारे आज के इस जीवन के दृष्टिकोण में इसकी बड़ी महत्वता है। कश्मीरी में ये ललवाक बोलता हूँ, नावद बरस अटगंट डुलगोम, नावद बरस अटगंट डुलगोम, देह कान हुलगोम, हाय क्या क्यों, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, फैलरोस खोल गोम, हाय क्या क्यों। अब ये देखिए, इसमें नावद बरस अटगन डोलगों की बात करती है। नावद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं। तो ललदेत मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है। वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं आकांक्षाएं सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं मिठाई के समान है। और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है और मीठा चाहता है, क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदेत इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है। वो कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ी बड़ा बोझ क्रिएट कर देती है हमारे ऊपर। और फिर कहती है कि देह कान होल गोम भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूं, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यो, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलरोस क्यों घूम हाई क्या की हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ूं या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए।

और दूरानी सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए, इसलिए शायद तुम हमारे ना हो सके। वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे, मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही बेवजह।

0: कमरों में कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

थी पर रह गई अधूरी, हसरतों की मीनार दब गई सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश भी। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे, शायद तुम भुला बैठे हो।

कोई आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस बाय Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।
0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक

0: खास पहल शुरू की है
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित श्रम एवं रोजगार भूमि और पारिवारिक विवाद एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 13। कार्यक्रम का शीर्षक है जिद। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
3: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, रेट्रो हिट्स का एक और अंक लेकर आई हूं। जिद, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है।

यूं है सब कुछ मेरे पास, बस दवाई दिल नहीं। दूर वो मुझसे है पर मैं उससे नाराज नहीं। मालूम है अब भी मोहब्बत करता है वो मुझसे, वो थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं।

जख्म क्या होता है ये बताएंगे किसी रोज, कमाल की गजल तुमको सुनाएंगे किसी रोज। थी उनकी जिद कि मैं जाऊं उनको मनाने, मुझे ये वहम था कि वो बुलाएंगे किसी रोज़।

बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहीं बारिश हुई, फलक को आदत थी जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमको भी जिद थी वहाँ आशियाना बनाने की।

थाम लिया खुद को अपने दम पर, मंजिल मिलेगी इस पक्के इरादे पर, हवा चाहे कितनी भी तेज हो, राह बनाएंगे इस फलक पर।

हर एक गम को खुशी में बदल दिया हमने, जिद थी हमारी खुद को संभाल दिया हमने, हवाओं का रुख चाहे जिधर भी जाए, मुकद्दर को अपनी राह पर डाल दिया हमने।

तू अपनी जिद पे अड़ा है, मैं भी इरादे की पक्की हूँ। हर ठोकर ने सिखाया, मैं भी हौसले की पक्की हूँ। ये जो राहें बदलेगी, मैं फिर भी चलूंगा। हर मंजिल का दरवाजा मेरी जिद पर खुलेगा।

जिद पर हूँ अपनी मंजिल को पाने की, हर मुश्किल से टकराने की, ना हार मानूंगा ना रुकूंगा कभी, ये जिद है मुझे अपने ख्वाब सजाने की।

गिरते हैं संभलते हैं ये रीत पुरानी है, हर मुश्किल से लड़ना ही तो मेरी कहानी है। सपनों को सच करने की जिद लेकर चला हूँ, रुकना मेरा सफर में ये बात अनजानी है।

इसके साथ ही रेट्रो हिट्स का आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। जो ठान लूँ वो करके दिखाने की, दुनिया कहे नामुमकिन है जो उसे मुमकिन बनाने की। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 13। कार्यक्रम का शीर्षक था जिद। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 5। स्टूडियो में आए हुए मेहमान हैं प्रवीण वर्मा खिप्पल, आपसे बात करेंगे आरजे सेजल।
3: नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो 90.0 MHz ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। मैं तुहाडी रेडियो सखी सेजल तुहाडा स्वागत करदी हां अज दे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी विच। अज गल्लां बातां ते शायरी दा सफर होएगा पंजाबी विच ही। हुन असी स्वागत करदे हां साडे अज दे मेहमान श्री प्रवीण वर्मा जी खिप्पल दा। सर, तुहाडा बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद जी। मेरे वल्लों सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, सारे ही तुहाडे स्रोतियां नूं दिलों धन्नवाद।
3: हुण मैं चाहवांगी कि साडे जिहड़े सुनन वाले ने उहनां नूं तुसीं आप ही अपना छोटा जिहा परिचय दो।
4: मेरा नाम जिवें तुसीं दस्सिया है प्रवीण वर्मा खिप्पल। खिप्पल असल च मेरा तखल्लस है, ते तखल्लस किसे भी शायर लई, वैसे मैं अपने आप नूं शायर नहीं मानदा, पर फिर भी जिवें कहिंदे ने कि कोई कवि है शायर है उहने तखल्लस रखना जरूरी हुंदा है, ते उस दे लई मैं अपना खिप्पल रख्या सीगा। खिप्पल बेसिकली मेरा गोत है, ते खिप्पल दे मायने जिहड़े मैं मानदा हाँ खुशी ख्याल पवित्रता ते लै, इस नूं मन के मैं पूरा कंकलूजन इहदा खिप्पल च कढ़िया सीगा। ते उहदे लई मैं कुछ लाइनां लिखियां सीगियां कि तखल्लस इस नाचीज़ दा खिप्पल है आबाद, तखल्लस इस नाचीज़ दा खिप्पल है आबाद, बंदा है सुबहान रहिंदा खोया खाब, बंदा है सुबहान रहिंदा खोया खाब।
3: वाह, बहुत खूब इंट्रोडक्शन दिती तुसी। ते हुन मैं ए चीज़ पूछना चाहवांगी जिवें तुहाडा जिहड़ा प्रोफेशन रहा और टीचिंग दा है, ते टीचिंग दे प्रोफेशन तो ए शेरो शायरी दा सफर किद्दां शुरू होया?
4: असल च मैं जदों अपने पिंड च रहिंदा सीगा पंजाब च, बेसिकली मेरा जन्म जिहड़ा पंजाब दा है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ते 8th क्लास तो ही मैं पोइट्री गीत दो गाना सोंग लिखने स्टार्ट करते सीगे। पर उस तो बाद जिवें जिवें मैच्योरिटी आंदी गई, अपां किताबां नाल मुहब्बत हुंदी गई, ते फिर सूफीज़म वल मेरा ज़्यादा ध्यान हो गया, ते उस तो बाद फिर जिहड़ी गंभीरता चाहीदी सी मैनूं उह मैनूं असल च सूफीज़म च मिली, ते तां जाके फिर मेरा जिहड़ा रुझान है उह टीचिंग दे नाल नाल किते ना किते इक कवि दे तौर ते इक लेखक दे तौर ते मेरे अंदर जिहड़े मैनूं बार बार प्रेरित करदे ने, जिहड़े मेरे जिहड़े जज्बात ने, उहनां दे सदका ही मैं अज इस काबिल होया कि मैं अपने कुछ जज्बातां नूं, अपनी कुछ फीलिंग्स नूं लोगों के सामने शब्दां राहीं शेयर कर सकता हाँ। तो इस दे मद्देनज़र मैं कुछ लिखा सीगा, तो उम्मीद है तुसी पसंद करोगे कि शायरी शुरी मैं की जाना, शायरी शुरी मैं की जाना, मैं नीरा अनजाण, विच पंजाबी करा मैं गल्लां समझा अपना माण, थोड़ा बहुता लिख लैना हाँ जिंदगी कोलों सीख लैना हाँ, ख्वाबां दे विच खो लैना हाँ शब्दां नूं परो लैना हाँ, शब्दां विच जज्बात परो के चाड़ा इश्क दी पाण, खिप्पला शायरी शुरी मैं की जाना, मैं नीरा अनजाण, विच पंजाबी करां मैं गल्लां समझां अपना माण, वारिश बुल्ले शिव वांगरां सोध सोध के गीत लिखां, वारिश बुल्ले शिव वांगरां सोध सोध के गीत लिखां, कुछ तेरे दिते दर्द लिखां कुछ नाल निभाई प्रीत लिखां, कदे कादर दे सब रंग लिखां किते कुदरत दी मैं रीत लिखां, निर्मोही निर्गुण जा खिप्पल लोक कहन गुणवान, शायरी शुरी मैं की जाना मैं नीरा अनजाण, विच पंजाबी करां मैं गल्लां समझां अपना माण, समझां अपना माण।
3: वाह, बहुत खूब। ते वारिस शाह जी दे शिव बटालवी जी दा जिक्र भी हो गया है कविता विच, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੈਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜੈਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
4: ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈਏ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਈਏ, ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਝੁਕਦਾ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਰੇਤ ਵਾਂਗਰਾਂ ਜੋ ਮੁੱਠੀ 'ਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਰੇਤ ਵਾਂਗਰਾਂ ਜੋ ਮੁੱਠੀ 'ਚੋਂ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
4: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਆਰਸੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।
3: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आर लिस्निंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। शब्द नेक कमाईया ते इस शब्द नूं आवाज दिती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करने वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदरा जोसन जी, निरवैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसी इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: कवच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
1: हवाओं के रुख पर जो बिखर जाए वो खुशबू है, दिलों को जो आपस में जोड़ दे वो गुप्तगू है, आपकी पसंद, आपकी यादें और हमारी आवाज, इसी हसीन सिलसिले का नाम आपकी फरमाइश का जादू है। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता सुनने वाले हमारे सभी अजीज और प्यारे श्रोताओं को भारत सोपोरी का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह।
5: और मेरी यानी कृष्णा की तरफ से भी आप सभी को एक बेहद खूबसूरत और सुहानी शाम। दोस्तों, रेडियो वितस्ता के इस बेहद खास और आप सभी के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और खैर मकदम भी।
1: कृष्णा, सच कहूँ तो इस प्रोग्राम का इंतजार जितना हमारे दोस्तों को होता है, उससे कहीं ज्यादा बेसब्री से हमें हमारे श्रोताओं की फरमाइशों का इंतजार रहता है, क्योंकि ये फरमाइशें हमारे लिए सिर्फ चंद गानों की लिस्ट नहीं है।
5: बिल्कुल सही कहा भरत जी आपने, हम यहाँ आपको महज एक गाना नहीं सुनाते। जब आप अपनी पसंद का कोई गीत हम तक भेजते हैं, तो हम उसके पीछे छुपी आपकी भावनाओं को, आपके एहसासों को और आपकी यादों को महसूस करते हैं और महसूस कराते हैं।
1: यही तो रेडियो की जादुई ताकत है दोस्तों। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये गीत और आपके जज्बात हम इन आवाज की तरंगों के जरिए तमाम सरहदों और सीमाओं के पार भेज देते हैं। कोई भी सीमा इन तरंगों को बांध नहीं सकती।
5: तो बस अपने दिल के तार जोड़ लीजिए और तैयार हो जाइए यादों के इस हसीन सफर पर चलने के लिए। भरत जी, क्यों ना फिर पहली फरमाइश के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए।
1: यकीनन कृष्णा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी फरमाइश का खूबसूरत सिलसिला इस पहले नगमे के साथ।

0: उम्मीद है आप सभी को ये फरमाइशी गीत पसंद आया होगा। इस गीत की फरमाइश आई थी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता थे निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये गीत था फिल्म खिलौना से। गीत के बोल थे हम जानते हैं तुम हमें। इस गीत को अपनी आवाज से सवारा था अलका याग्निक और विनोद राठौर ने। भरत जी, अगली फरमाइश कहाँ से आई है?
1: अगली फरमाइश हमारे पास अम्बाला कैंट से आई है और भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है बलविंदर सिंह, कर्नल HS कौशल और इनके सभी दोस्त। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आखिरी दांव से गीत। गीत के बोल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। पेश है इन सभी का ये फरमाइशी नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले श्रोता हैं दिलीप, गीता, चीकू, निन्नी, आकाश और मंजू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अब्दुल्ला का गीत। गीत के बोल हैं, मैंने पूछा चांद से, इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। तो आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश का ये गीत।

हम सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से भेजने वाली श्रोता है विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म गाइड से गीत। गीत के बोल है दिन ढल जाए। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाली अन्य श्रोता है मीनाक्षी पलोमा व डॉक्टर ईशानी। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं एक हरियाणवी गीत जिसके बोल है, जीजा तू काला मैं गोरी गनी। ये फिल्म चंद्रावल से लिया गया है और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजे वाले श्रोता है बंशीलाल संधु। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधु, जसबीर सिंह संधु, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधु परिवार। और ये लिखते हैं भारत भाई जी को मीठी मीठी प्यारी राम राम। और साथ में लिखते हैं आपकी बोली मिश्री से भी मीठी है। बंशीलाल संधु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी जब हमें हमारे कार्यक्रम के बारे में, हमारी आवाज के बारे में बोलते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और साथ में हम सभी की ओर से, टीम रेडियो विदसा की ओर से, आपको और आपके परिवार को मीठी मीठी और प्यारी प्यारी राम राम। सुनते हैं बंशीलाल संधु जी का ये पसंदीदा हरियाणवी नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं अनिल और हनी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश का गीत। गीत के बोल हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इस गीत को अपनी आवाज से सवारा है लता मंगेशकर ने। तो दीजिए पेश है इनकी फरमाइश का ये मधुर।

तो पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दोस्ती का गीत। गीत के बोल हैं, मेरा तो जो भी कदम है। इस गीत को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी सर ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

आप सभी सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। कार्यक्रम आपकी फरमाइश जारी है। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी कोई फरमाइश हमें भेजना चाहते हैं, आपको फरमाइश भेजनी होगी पुरानी हिंदी फिल्म से या हरियाणवी या पंजाबी गीत के लिए। आप हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फरमाइश भेजें गीत के बोल के साथ, और साथ में लिखें अपना नाम, कहां से आप लिख रहे हैं, और अगर आपके साथ अन्य परिवारजन या आपके दोस्त सुनना चाहते हैं आप उनके भी नाम स्पष्ट लिखिए। आप भेजिए अपनी फरमाइश हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेते हैं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है पीएस नहावकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जुदाई का गीत। गीत के बोल है मार गई मुझे तेरी जुदाई। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार ने। पीएस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। आइए प्रस्तुत है इन सभी का, ये हम सब का मनपसंद गीत।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणधीर बांगड़, गुरमीजो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली का गीत। गीत के बोल हैं हुस्न पहाड़ों का। इसे अपनी आवाज से सवारा है लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, सुनाते हैं आपको एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से, और भेजने वाले श्रोता है श्रीमती उषा कौशल जी। ये सुनना चाहती है फिल्म मधुमति से गीत। गीत के बोल है सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। तो आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

0: आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत, और ये गीत है फिल्म राम और श्याम से। गीत के बोल है, हम भी अगर बच्चे होते। इस गीत को आवाज दी है मना डे, आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है पूजा विहार अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है प्रेमचंद राजपूत। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है वंशिका, सुमेश कुमार और इनके सभी दोस्त। आप सभी को हम इस गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के फरमाइशी गीतों का सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हमारी प्रस्तुति भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: जरूरत है।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
3: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेट A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।
5: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
4: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: You are listening 90.0 FM Radio Vidasta Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

0: तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की
1: बात करेंगे। नीलू खेड़ी में मैं हूं तो यहाँ की भी बात हम करेंगे। मैं अभी समालखा में सेवा साधना केंद्र है माधव जन सेवा न्यास का, वहां एक कार्यक्रम था, आज वहां से अभी लौटा हूं। तो पानीपत और करनाल तो साहब अच्छी खासी लू की चपेट में आप कहोगे, तो मतलब इसे सही सटीक चित्रण कह सकते हैं हम हालात का, मौसम का। और मेरा जो एयर कंडीशनर है स्टूडियो का, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ खड़े कर रहा है, बल्कि जमा जवाब दे गया। और आप समझिए गर्मी का आलम क्या है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तापमान 44-45 डिग्री होगा नीलोखेड़ी में, करनाल में। तो जितेश जी आप अपनी कहानी बता दीजिए क्या है।
2: बिल्कुल सर, गर्मी और लू की अगर हम बात करें तो सारे हरियाणा में एक जैसा ही तापमान और एक जैसा ही मौसम हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिन से। नौतपा की हमने बात की, पीछे नौतपा भी चला हुआ है, बट अच्छी खबर ये है मौसम विभाग की कि शुक्रवार के बाद शायद तापमान में थोड़ी गिरावट हो और पूरे हरियाणा में हमें मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले, हमारा जो तापमान है वो थोड़ा नीचे हमें देखने को मिले। अगर आज के पलवल के तापमान की हम बात करें तो आज हमारे पलवल का तापमान 45 और 46 डिग्री सर नोट किया गया है।
1: चलिए, आपके पास जितेश जी मौसम विभाग से हर दिन कोई विवरण आता है कि नहीं, हरियाणा का मौसम का पूर्वानुमान, बीते दिन के मौसम के आंकड़े आपके पास आते हैं भारत जी?
3: सभी को मेरा नमस्कार, सायाने, राम राम। और सॉरी मैं आज थोड़ी सी देर से जुड़ा हूँ, जस्ट अभी पहुंचा हूँ। और जैसे आपने कहा गर्मी बहुत है, बहुत सारी गर्मी है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। पर जब मैं स्टूडियो में आ गया तो मेरे एयर कंडीशनर ने स्वागत किया और ठंडी ठंडी हवाएं दे रहा है और आपसे जुड़ा हूँ। और जहाँ तक तो सवाल है गर्मी का, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और सभी को हम यही कहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें, गर्मी में ज़्यादा पानी पिएं और बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अगर जाएं भी तो सिर ढक के और मुंह ढक के जाएं और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। सर एक बार फिर क्षमा चाहूँगा देरी से जुड़ने के लिए।
1: चलिए, एक तो पता क्या चक्कर है, मैं कल कार्यक्रम में पूरा समय रहा नहीं, आप देरी से आए आज, ये तो यूं लग रहा है कि मेरी आपकी मुलाकात ही ढंग से कई दिन से नहीं हुई। खैर, आपका स्वागत है आज विशेष आग्रह पर। आज हमने हांडीखेड़ा की सरपंच को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक भी उनका कैमरा जो है वो नृत्य कर रहा है। गुरविंदर सिंह जी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जबकि मैंने बहुत सख्ती से कहा था कि कार्यक्रम के बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए। कार्यक्रम का सारा क्या बोलते हैं उसे, तार सार लय उसको हिला देती हैं ये गलतियां जो हम जाने अनजाने में हर दिन करते हैं। और गुरविंदर सिंह जी आपको तो जरा आज मैं शो कॉज नोटिस दे के मानूंगा, कारण बताओ नोटिस, वो स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि भाई एक चीज हम 2 महीने में भी ठीक नहीं कर पा रहे, तुम कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, क्यों भारत जी?
3: जी चलिए, शो का नोट्स तो नहीं देते हैं बल्कि ये करते हैं कि आप आगे से जिनको भी जोड़े उनसे एक बार आप लाइव अपने लेवल पे हो जाएं, उनको कैमरा की सेटिंग और उनके आवाज के बारे में हमें बताएं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज के मेहमान कपिला देवी जी। कपिला देवी जी, अगर आपको हमारी आवाज मिलती है, आपका स्वागत और अभिनंदन, इतने में वो अदृश्य हो गई है। तो प्रीतम जी आप कैसे हैं, और जितेश जी मेरा नमस्कार सभी को।
1: कपिला जी हांडीखेड़ा सिरसा की सरपंच हैं। हाँ प्रीतम जी,
3: जी कॉल आ रहा था शायद एक।
4: नमस्कार बाजी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से नमस्कार, और सभी श्रोताओं को हरियाणा में राम राम, क्योंकि राम प्रोग्राम का नाम है वो राम राम हरियाणा है। भारत जी, हमारे यहाँ दादरी में जो टेम्परेचर है वो 40-47 डिग्री के करीब टेम्परेचर, और हवा भी तेज चल रही है जिससे लू के थपेड़े लग रहे हैं, बाहर निकलने को जी नहीं कर रहा और अंदर लाइट नहीं है, हमारा एसी जवाब दे रहा है क्योंकि लाइट
1: मैं, मैं आपसे पूछ लूं बीच में रोक के, भाई साहब आपको इस नो तपे में बाहर जाने के लिए कहा किसने है? हम तो कई दिन से लोगों को बता रहे हैं कि भले मानसो नो तपे के बीच में घर से ना निकलना, जब तक विवशता ना हो, जब तक अपरिहार्य ना हो, जब तक मजबूरी ना हो, जब तक कोई संकट ना आए, जब तक कुछ ऐसा ना हो जिसके कारण बड़ा घाटा होने वाला हो, घर से ना निकले, कम से कम दोपहर में ना निकले।
3: पर सर जाना पड़ता है, मन्ने भी जाना पड़ा और मैं भी आया स्टूडियो में आपसे रूबरू।
1: जाना तो पड़ेगा, मैंने कह रहा हूँ मजबूरी हो तो जाओ, काम पे भी जाना पड़ेगा, कारोबार में भी जाना पड़ेगा, लेकिन जाओ तो जरा बच के, जरा संभल के।
3: जी जी
1: जी
3: जी कपिला जी,
1: आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रीतम जी कुछ कह रहे थे, आपकी बात के बीच में मैं कूद पड़ा था।
4: सर मैं कह रहा था मजबूरी हमारे श्रोता और दर्शकों के कारण है सर, क्योंकि हमारे श्रोता और दर्शकों का एक प्रश्न आए हुए थे कि पोस्को एक्ट के लिए कोई SHO या कोई एडवोकेट लेके आओ, तो सिगरी कल या परसों में हमारे पास एक SHO महिला SHO या महिला सिपाही जो पोस्को एक्ट के बारे में पता होगा और एक एडवोकेट हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगी सर, कल या परसों का ही समय होगा सर।
1: ये बिल्कुल अच्छा किया आपने, मेरे मन में भी था कि हम सरपंचों को जैसे इस कार्यक्रम में जोड़ते हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधियों को जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह अन्य अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी आने चाहिए। जैसे आपने कहा कि पोक्सो पर बात करने के लिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं, वो आएंगे। इसके साथ साथ इन दिनों पानी का मामला, क्योंकि गर्मी तीखी है, तो एक नाम मैं सजेस्ट कर रहा हूं, ये हमारी यहां की टीम देख ले, कुंवर अमित सिंह हैं जो हरियाणा के जनस्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, करनाल में यहां पर स्टेट लेवल की एक लेबोरेटरी है पानी की परीक्षण की, पानी की जल की गुणवत्ता, पेयजल की गुणवत्ता की जांच होती है वहां, उसके वो प्रभारी हैं, तो उनको किसी दिन बुलाया जा सकता है। पानी कहां का कैसा है हरियाणा में, पानी का बचाव कैसे करें, पानी की गुणवत्ता को लेकर के कुछ भ्रम है, उन सारे विषयों पर अमित सिंह जी से बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लाभ होगा। सौरभ ने, मैं समझता हूं, हमारी ये बात नोट कर ही ली होगी। आइए सरपंच साहिबा का स्वागत कर लेते हैं, कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। कपिला देवी जी, राम राम। हाँ आप बेटे को कहिए, आपका शायद माइक्रोफोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दें। कपिला जी फिर से बताऊंगा, हांडीखेड़ा के सरपंच हैं और कपिला जी को हमारे साथ कार्यक्रम में जोड़ा जाए इसकी इसके लिए जो हमारे मित्र राधेश्याम जी हैं हांडीखेड़ा वाले, राधेश्याम शर्मा जी, वो कहीं कह रहे थे कि जी हमारी सरपंच भी तो इस मंच पर आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, आपकी सरपंच केवल आपकी सरपंच नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि हमारी भी सरपंच है। तो कपिला जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, लेकिन आपका माइक जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपके साथ जो भी वहां सहयोग कर रहा है, बेटा है, पोता है, उसको कहिए कि माइक माइक के साथ जुड़े, माइक के साथ नहीं जुड़े हैं, माइक के बिना फिर इस विमर्श का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मुझे लगता है सौरभ माइक्रोफोन इनका ऑन नहीं है या क्या कहानी है, ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से आप कुछ कहिए कपिला जी। नहीं, आप कपिला जी को दोबारा जोड़ना चाहिए, इनको दोबारा जोड़े, उसके बाद बनेगी बात।
3: वीरेंद्र जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कल का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा रहा और आप थे नहीं, हमारे सभी दोस्तों को आपकी जो कमी है वो यहाँ पर खली और हमने कोशिश की कल के सरपंच विपिन जी से जितने भी प्रश्न हमने किए बेबाक उन्होंने जवाब दिए और लगा कि एक युवा के हाथ में अब एक गांव की बागडोर है। और जब आप आए तो एक प्रश्न आपका मैंने चुरा के उनसे पूछा और उन्होंने उसका भी जवाब दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सही मन से सही दिशा में कोई भी व्यक्ति चले, चाहे जितना भी वो कर सके, वो जरूर अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने शहर के लिए वो अपना योगदान दे सकता है। वो छवि हमें कल विपिन जी के बारे में मिली और जैसे प्रीतम जी कह रहे थे कि हमें 15 दिन से पानी नहीं आया, पर विपिन जी ने तो कहा कि हमारे तो 8 बजे पानी आ चुका होता है। तो मैंने इनसे प्रीतम जी से भी पूछा था कि ये विरोधाभास क्यों है, पर कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी ऐसे ही रहें। जी
1: हरबल साहब बोलिए, अगर कुछ बोलेंगे तो पता चलेगा आपकी आवाज हम तक आ रही है कि नहीं। जी कपिला जी,
5: राम राम सर।
1: हाँ राम राम, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया सर।
1: तो चलो सबसे पहले ना आप आज आपके
3: सर से हम पूरे हरियाणा को बताते हैं। सर शायद एक कॉल आया
1: है। बोल रहे हैं क्या?
3: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
6: सर मैं ममता बोल रही हूँ, सिर्फ की दादरी से, वीरेंद्र सिंह से बात कर रही
3: हूँ। हाँ जी हाँ जी,
1: हाँ बताओ ममता जी।
6: दादरी में क्या सर?
4: ममता जी आप दूसरा फोन को बंद
1: कीजिए। जिनका ये फोन बज रहा है जरा उनको म्यूट कर दीजिए भाई। बोलो ममता जी, बोलो बोलो।
6: मैं ऐसे कह रही हूँ सर, जो बन रहा है दादरी में उसकी वजह से लाइन पड़ी नहीं थी, इसलिए पानी नहीं आया था, अब रो जाता है सर।
1: वो कुछ काम चल रहा होगा, कभी कभी डेवलपमेंट वर्क्स के कारण होता है। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला उस पर फेसबुक पर, भारत जी, मेरे किसी भाषण का क्लिपिंग थी और उसमें मैंने बताया हुआ था कि भाई हरियाणा में एक जमाना था जब 5-4 गांव होंगे पूरे हरियाणा में जहां बिजली 24 घंटे आती हो। अब हरियाणा के 80% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली देते हैं हम, निर्बाध आबाद। तो एक मित्र जिनका नाम संयोग से वीरेंद्र ही है, वो कहीं जींद में उस कार्यक्रम को सुन देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे फटाक से कहा जी 80% गांव में बिजली 24 घंटे की ताव है, मारे तो नहीं आती। तो मेरी उनसे फिर चर्चा शुरू हो गई व्हाट्सएप पर। तो मैंने उनको कहा मित्र बिजली 24 घंटे हम हरियाणा के करीब करीब 6200 गांवों में दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली देने का अभिप्राय ये है कि कभी कभार मेंटेनेंस के लिए, मान लीजिए किसी एक गली की बिजली खराब हो गई, कोई तार बदलनी है, तो तार बदलनी है तो वो लाइन तो काटनी पड़ेगी ना
3: जी जी।
1: तो चाहे एक बिजली खराब हो सकता है पूरा फीडर उसमें 15 मिनट आधा घंटा रख रखाव के लिए बिजली काटनी पड़े। ऐसी स्थिति तो उन गांवों में हो सकती है जहां हम 24 घंटे दे रहे हैं, जैसे मेरा खुद का गांव। वो भले आदमी ने मेरे गांव का आंकड़ा मुझे भेज दिया, बोले जी ये देखो 20 मिनट का कट लगा है। मैंने कहा ऊपर क्या लिखा हुआ है ग्रुप में पढ़ो कि फलाने लाइन मैन ने मरम्मत के लिए कट लगवाया है। तो वो उस तरह के कट को आप ये नहीं कहेंगे कि कट है, वो 24 घंटे के ना जाएगा। लेकिन तीन जिला हमारे हरियाणा के उन जिलों में से है, मैंने उनको कहा फिर वीरेंद्र भाई को, उनका गांव सिंघाणा है जींद जिले में सफीदों में, कि भाई आपके गांव समेत जींद जिले के बहुत सारे गांव हैं जिन्होंने जगमग योजना का फायदा ही नहीं लिया। लोग बिल कम करते हैं, चोरी ज्यादा करते हैं और जब हमारे सरकार के लोग जाते हैं वहां पे कि चलो हम आपकी नई लाइनें लगाएंगे, चलो हम आपके ट्रांसफार्मर बदलेंगे, आपके कंडक्टर बदलेंगे ताकि 24 घंटे बिजली दी जा सके, तो वहां कई लोग आके खड़े हो जाते हैं हमने को नहीं चाहिए। भारत जी क्या आप सोच सकते हो कि मैं किसी गांव में जाऊं और वहां को आपको 24 घंटे बिजली दिलवाऊंगा और गांव के ही कोई दो अड़ियल आदमी आके खड़े हो जाए हमने को नहीं चाहिए जी, मारा तो 5 घंटे में काम चल रहा है, हम तो 10 घंटे में सार लेंगे। वो कौन लोग थे जिनको बिल नहीं भरना, जिनको टाकी लगा के कुंडी लगा के बिजली चलानी थी? तो ऐसे लोग हैं बड़े कई गांव हैं और शायद उन्हीं गांव में हम अभी तक भी हमारा गांव जगमग गांव योजना का लाभ नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये जो पानी कहीं नहीं पहुंचा होगा तो शायद मेंटेनेंस का, जैसे अभी ममता जी ने बताया। ममता जी धन्यवाद, आप फोन कॉल करके अपडेट दिया। मैं एक बात कह रहा हूं, जरा स्टूडियो सुन ले, ग्रामोदय का स्टूडियो सुन ले, संगम सुन ले, कॉलर आते ही आप हमें प्राइवेट मैसेज करके या इसकी वॉल्यूम बढ़ाइए, हमें पता चलना चाहिए। कई बार मुझे सुनाई नहीं देता, भारत जी ने पकड़ लिया था रिंग, रिंग की वॉल्यूम बढ़ाइए, हमारे पास ऊंची रिंग सुनेगी तो हम तुरंत सारे काम छोड़ के इस बात पे आएंगे। फिर से चलते हैं कपिला जी के पास। कपिला जी ये हांडीखेड़ा है कहाँ, हांडीखेड़ा का परिचय दीजिए।
7: सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सर, और जैसीडी के नजदीक और बेदवाला गांव के पास है।
1: हाँ ये नहीं मुझे तो पता है, मैं तो हांडीखेड़ा आया हूँ, सारे हरियाणा के लोगों को बताओ ना कि मेरा गांव फलाने खंड में है, इतनी इसकी आबादी है, इतने यहाँ पर ऐसे ऐसे विकास के काम हुए। थोड़ा खुल के विस्तार से बताइए आपकी चौधराहट में क्या क्या हुआ, हांडीखेड़ा में क्या है, हांडीखेड़ा की पहचान।
7: हमारा
1: रुकिए, घंटी बज गई, घंटी जब भी बजेगी हम रुकेंगे। हेलो
5: हेलो
1: हेलो, हाँ जी
5: हेलो,
3: हाँ जी बोलिए,
1: हाँ जी बोलिए। श्रोता फिर डिस्कनेक्ट हो गए। कपिला जी कॉल कट गई, कॉल बीच में आएगी तो रुक जाइएगा, वरना अपनी बात कहते जाइए।
7: ठीक है सर। हमारा गांव सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे गांव की जनसंख्या है 1847 टोटल। उसमें 900
3: फिर घंटी बज गई,
7: 947 मेल है।
1: श्रोता को सुनेंगे, रुकिएगा। हेलो हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
3: कौन
1: बोल रहे
3: हैं? हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
5: नहीं सर, मैं अभी मैं HIRD में रिसोर्स पर्सन रहा हूँ सर, पहले अभी ये लाइव देख रहा था, उसमें ये नंबर था कि जुड़ने के लिए इस पे मिस कॉल करें।
1: हाँ, मुझे मैं ही जानना चाह रहा हूँ, एक बार अपना परिचय तो दीजिए महाराज, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इन दिनों क्या करते हैं, हमें पता भी तो चले। अब आप लाइव जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में और बहुत सारे लोग आपको देख सुन रहे हैं।
5: आवाज भी क्लियर आ रही सर।
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं, कृपा करके अपना नाम बताएं, क्या करते हैं ये बताएं। मेरी आवाज भारत जी आपको तो ठीक आ रही है?
3: हाँ, क्लियर आ रही है, लाइन में उनकी लाइन में
4: कोई दिक्कत
3: है जी?
1: हाँ चलिए, कोई बात नहीं, वो दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। कपिला जी की बात, छोटा सा गांव है हांडीखेड़ा, सिरसा जिला का गांव है। और बताइए हांडीखेड़ा में आपकी आपकी सरपंची में क्या क्या हुआ है?
7: जी, हमने गांव में शेड का निर्माण करवाया है, जैसे स्कूल में, योगशाला में और संस्थान घाट में। हमने नालियां भी सारी पक्की करवा दी है अपने गांव की, जिससे कि मच्छर और मक्खी ने वो
3: कौन?
1: हाँ श्रोता जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जरा बात करिए
3: जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बताइए।
8: हेलो,
3: हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए।
8: सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मेरी आवाज आ रही है क्या सर?
3: हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए।
4: हाँ जी, आप बताते हैं।
8: सर मैं विजेंद्र प्रजापति, गांव की काड़ा डिस्ट्रिक्ट सर खिदारी से बोल रहा हूँ। सर मेरा एक सुझाव है, आप किसी भी सरपंच को बुलाएं, उनसे एक बार जरूर पूछे कि रोड के दोनों तरफ आपने अपने गांव में पेड़ पौधे लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं?
3: दोबारा बताइए क्या कहना चाहते हैं।
1: आप लाइन पर बने रहे प्रजापति जी, सरपंच अभी जो आज की सरपंच है यही बता दें, इन्हीं से पूछ लीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है सरपंच साहिबा कि क्या आपने गांव में सड़क के दोनों किनारे पौधारोपण कराया है क्या?
7: हाँ जी जरूर करवाया है, पौधों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और स्वास्थ्य, हमने काफी जगह पेड़ पौधे लगवाए हैं, योगशाला में, व्यायामशाला में, उसमें फिरनी पे भी लगवाए हैं, जहां भी हमें लगा भी यहाँ पौधों की जरूरत है वहां हमने हर जगह पेड़ पौधे लगवाए हैं। सड़क के किनारे भी काफी हद तक लगवा चुके हैं।
1: आपके गांव को पड़ोस के गांव से जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें हैं
7: उस पे भी लगवा रखे हैं सर हमने।
1: अब हाँ, किस साइज के हो गए पेड़ पौधे, वो बड़े हैं क्या, छाया मिल जाते लोगों को आते जाते?
7: अभी छाया के लायक नहीं हुए सर, काफी हद तक बड़े हो चुके हैं, कम से कम 4-4 फुट 5-5 फुट के हो चुके हैं।
1: तो इस मौसम में उनका उनका बचाव हो, जब ये झुलसाने वाला मौसम है, इसकी भी कोई चिंता करी है आपने?
7: यस सर, उसमें पानी की व्यवस्था फुल कर रखी है ताकि पेड़ पौधे जले न।
1: चलिए बहुत बढ़िया, और क्या बताना चाहोगे आप हांडीखेड़ा के बारे में, जरा बताते चलिए। भारत जी का भी मन में कुछ सवाल कुलमुला रहे हैं, जल्दी से वो भी पूछेंगे।
3: जी जी, मैं कपिला जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, जो इनके साथ वहां पर साथी बैठे हैं, वो जब डिस्कशन करते हैं वो आवाज यहाँ पर आ रही है, तो उससे इनकी आवाज भी थोड़ी सी धूमिल हो रही है। कपिला जी, हम आज आपको सुनने आए हैं, आपके गांव की बात सुनने आए हैं, आप जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, आज के प्रोग्राम के मेहमान आप हैं और आपको हम सुनने आए हैं, जब हमें जरूरत होगी हम आपको रोक लेंगे और आपसे प्रश्न करेंगे। आप अपने गांव के बारे में बताइए, आपने ग्राम सभा कब की, उसमें कितने लोग आते हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, आपने गांव की बेटियों के लिए क्या काम किया है, तो ये सारी जानकारी दीजिए। बट इसी बीच हमारे पास एक और कॉल आ रहा है, इन सवालों का जवाब आप दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
9: सर मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट गांव दीवाना से बात कर रहा हूँ सर।
3: जी बोलिए सर, नाम आपका?
9: राधा कृष्ण जी।
3: जी बताइए राधा।
1: जय हो राधा कृष्ण जी, हेलो, स्वागत है आपका।
9: सर मैं HIRD में 2011 से लेकर के 2014 तक रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ, और प्रेजेंट में भी मैंने जो अभी ये NGO के थ्रू जो ट्रेनिंग चली ये भी मैंने दी है ट्रेनिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर कि गांव में पेड़ पौधों को लेकर के अभी इतनी वो नहीं रखी है। दूसरी चीज, गांव के अंदर जो जोहड़ है उनकी रिनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल एक महामारी का कारण बने हुए हैं। कभी भी विजिट करके देखना, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा पिछले 7-8 सालों से।
3: आप हमारे साथ बने रहिए, हम आप के जो प्रश्न है वो कपिला जी से करते हैं। कपिला जी, आपके गांव में कितने जोहड़ है और उनकी क्या स्थिति है? आपके साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी आवाज ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही है, प्लीज आप उनको बोलिए, या तो वही बोलें या आप बोलें। जी बताइए।
1: कपिला जी क्या आप जो आपका सहयोगी है उसके बताए बिना ये बताने की स्थिति में हो गांव में जोड़ कितने हैं?
10: हाँ जी।
1: गलत भी होगा आपका जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जवाब देना है, पीछे से आवाज नहीं आनी चाहिए।
10: नहीं सर, के साथ हमारे एक गंदे पानी के लिए, निकासी के लिए, और एक साफ पानी।
1: चलिए, मैं तो जो ये जो दीवाना वाले हमारे साथी हैं राधेश्याम जी आपने नाम बताया ना,
3: राधा कृष्ण।
1: अरे राधा कृष्ण भाई, आप गांव में रहते हो कि कहीं और रहते हो इन दिनों?
9: सर अभी मैं गांव में रहता हूं अभी।
1: आपके गांव के जोहड़ों की स्थिति बता दीजिए हमें, तो बाकी सारों की हम बाद में चिंता करेंगे, जरा आज आपकी क्लास ले लें हम।
9: नहीं सर, ये थ्री पॉइंट सिस्टम बना हुआ है, अब धरातल पे जो चीज है वो मैंने बता दिया जी, उसके बाद तो
1: रुको ना, ऐसे बच के नहीं जाने देंगे हम आपको, रुकिए। मैं राधा कृष्ण जी आपसे ही पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ इस समय गांव में तालाब कुल कितने हैं, जरा बताइए आप। तो
9: फोटो लेके देखना, गंद है जी, टोटल गंदगी।
1: मेरे प्रश्न से भागो मत, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा उत्तर दो ना। मैं आपके सवाल से नहीं भागूंगा, आप मेरे सवाल से मत भागो। मैंने ये पूछा कि दीवाना गांव में कुल कितने जोहड़ हैं, पहले ये बताइए। आज दीवाना की बात ही कर लें, हांडी खेड़ा तो जुड़ी जाएगा हमारे साथ। पहन दो भाई मुझे जल्दी से।
9: दीवाना गांव में दो जोहड़ हैं सर।
1: दीवाना में दो जोहड़ हैं, और आप कह रहे हो और ये दोनों को जोड़ के थ्री पॉइंट सिस्टम बना रखा है?
9: नहीं, दोनों में नहीं बना रखा, एक में बना रखा है।
1: एक को थ्री पॉइंट सिस्टम उसका बना हुआ है। कब का बना हुआ है ये
9: 7-8 साल 10 साल पहले बना होगा सर, आइडिया से। अब एग्जैक्ट तो मैं डेट नहीं बता पाऊंगा ना ईयर, लेकिन उसके बाद जब ये थ्री पॉइंट सिस्टम बनाया उसके बाद इसकी केयर नहीं हुई, और इसमें गंद जमते जमते अब टोटल गंदगी है बस, और कुछ भी नहीं है वहां पे।
1: चलिए, और इन दोनों
9: बंद पड़ी है। दूसरा जोड़ है वो, उसमें भी इतनी गंदगी है, जो गांव के जो SC मोहल्ला की तरफ है वहां पे भी उस जोड़ की भी स्थिति खराब है।
1: अच्छा, हर गांव में ना राधे जी, हर गांव में जोहड़ों के नाम होते हैं आमतौर पे, तो आपको आपके इन गांव के दोनों जोड़ों
9: मंत्री के पास है सर, ये
1: नाम ठीक से थोड़ा क्लियरली बताइए, वो मेरे पास कुछ आवाज गूंज के आ रही है।
9: ये मंदिर के पास जोहड़ है सर, मंदिर के पास सर, दरवाजे के पास,
1: मंदिर के पास एक जोहड़ है, और दूसरा
9: दूसरा सर दूसरा जोहड़ है हमारा जहाँ पे ये अपना ये शमशान घाट के पास जी।
1: अच्छा, एक एक तो कागज पेन उठा के ये लिखो, आपको हर हर जोहड़ का कुछ नाम होता है, शमशान घाट के पास है, मंदिर के पास है, ये आपने जनरल बात कर दी। आपने मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि आपके इन दोनों जोहड़ों के परंपरागत नाम क्या हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं, किसी किसी साधु के नाम पे होता है, कई बार किसी बुजुर्ग के नाम पे होता है, तो जोहड़ों के नाम पता करके रखिएगा। एक आपने कहा कि इनके आपके इन दोनों जोहड़ों में एक जोहड़ में त्रिकोण सिस्टम बना था 7-8-10 साल पहले। मेरी जहां तक याद है मुझे, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार बनने से पहले 3-5 सिस्टम बना करते थे। ये सरकार आने के बाद जब से पॉन्ड्स अथॉरिटी बनी है, हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का जो प्राधिकरण बना है, तब से 3-5 सिस्टम नहीं बन रहे हरियाणा में, तो वो पुराने ही हैं जो बने हुए हैं, बहुत सारे स्थानों पर हैं।

0: साफ करके क्रमवार तरीके से उनको उनको उनका शुद्धिकरण, खुदाई, सौंदर्यीकरण ये सब कर रहे हैं, और ये काम अब होता है हरियाणा तालाब प्राधिकरण की ओर से। अब आप क्योंकि दीवाना के पढ़े लिखे दीवाने हो, तो आपने एक काम करना है, आज आप अपने सरपंच को भी एक पत्र लिखेंगे, उसकी कॉपी मुझे भेजेंगे, देकर आएंगे एक पत्र कि इस जोड़ इन हमारे इन दोनों जोड़ों की सफाई कराई जाए, अगली ग्राम सभा के एजेंडे में इसको शामिल करके और इनकी सफाई की व्यवस्था करी जाए, खत मुझे भी भेजेंगे ताकि एक क्षण रुकिए। दूसरा, आप उस खत की एक प्रतिलिपि हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका कार्यालय पंचकुला में है, आप ढूंढोगे तो उसका पता भी आपको मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट है, उस पर भी आप जा सकते हैं और आप अपने तालाब की दुर्गति दुर्दशा का चित्र खींच करके वहां उसको जोड़ दें, वहां उनको भेज दें, फोटो भी भेजें और डेटा भी भेजें। सरपंच साहिबा को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करिए, गुरविंदर सिंह जी।
1: राइट सर,
2: जी जी, मैं राधेकृष्ण जी जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जाने से पहले जो आपने प्रश्न उठाए हैं, इन प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जितने भी हमारे साथ सरपंच जुड़ेंगे उनसे हम बात करें। कपिला जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
0: हाँ कपिला जी बोलिए, आपने अपने गांव के झोड़ों को ठीक रखने के लिए क्या उपाय किया है? कपिला जी आप बताइए, क्या पता हम बाकी लोग उसमें से कुछ सीख लें। माइक शायद अनम्यूट नहीं है, म्यूट है। कपिला जी बोलिए जरा, आवाज आती आती वहीं रह गई, कहीं अटक गई, मतलब या फतेहबाद दो रहेगी मार तक आई को नहीं। कपिला जी का माइक ठीक कराया जाए और मैं
3: तब तक सर फिर से,
0: हाँ बोलिए।
3: जो हमारे कॉलर धिकाड़ा से कॉलर आया का फोन आया था सर, जिसका विजेंद्र जी थे, कल हमारे साथ धिकाड़ा के सरपंच विपिन जी जुड़े हुए थे, तो मैंने हाँ। एक सवाल उठाया था सरपंच साहब से कि आपके गांव की ही ये शिकायत लगभग 14 या 15 तारीख के करीब हमारे पास आई थी कि इनके गांव के आसपास के पेड़ हैं वो जला दिए गए किसानों ने, जो फाड़े वो गेहूं के जो फास्ते थे उनमें आग लगाई तो वो भी जल गए। तो ये एक पंचायत के, मेरा तो एक सुझाव है कि हर गाँव की पंचायत हमारे अपने गाँव में ये सुनिश्चित करे कि कोई भी किसान खेतों में आग नहीं लगाएगा,
0: क्योंकि हाँ, ये जो अपने गैर ऐसा करना तो गैर कानूनी है ना महाराज। अगर कोई फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है, उसको जुर्माना भी लगता है, और इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी फिक्स होती है। पंचायतें अगर ठीक से काम नहीं करती तो हम वहां के ग्राम सचिवों से भी जवाब तलब करते हैं और सरपंचों से भी करते हैं। कपिला जी बोलिए कुछ, शायद आपका ऑडियो ठीक हो गया हो। नहीं, यहाँ दिक्कत है आज कपिला जी, जितना मैंने आज गुरविंदर जी को कहा था कि चीजों को दुरुस्त करिए उतना ही गड़बड़ हो रहा है मामला। मैं तालाबों वाली विषय पे भारत जी अगर आप इजाजत दे दो तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ।
2: प्लीज सर,
0: वास्तव में ये वास्तव में इस समय मंथन का और चिंतन का विषय है कि पिछली सरकार यानी कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा में तालाबों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, जो त्रि सरोवर, पंच सरोवर, थ्री पॉइंट, फाइव पॉइंट सिस्टम की बात हुई थी, तो वो थ्री पॉइंट फाइव पॉइंट के समय में जो तालाब बेहतर बने थे वो तालाब भी दुर्गति को प्राप्त हो चुके हैं। वो खराब इसलिए हुए क्योंकि जब बनाए थे नए नए बढ़िया लग रहे थे, यूं भी लग रहा था नया प्रयोग हो रहा है, गजब होने वाला है। हमारे यहां सिरसी गांव है असंत विधानसभा, वहां बहुत बढ़िया तालाब ये थ्री पॉइंट या फाइव पॉइंट सिस्टम बना था, कामयाब सभी लगा कुछ महीने तक। लेकिन बनने के बाद भारत जी, एक बार बन गया फिर उसकी संभाल कैसे होनी है, उसकी व्यवस्था खड़ी नहीं हुई और परिणाम नतीजा
2: फिर खराब हो गए,
0: ढाक के तीन वहीं के वहीं आगे खड़े हो गए। अभी जो तालाब प्राधिकरण काम कर रहा है तालाबों को लेकर, अब भी तालाबों की बनने के

0: बाद की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। मैं अपने गांव का उदाहरण दे रहा हूं, आज की आंखों देखी बता रहा हूं। मैं अभी 2-3 घंटे पहले एक परिवार में शोक प्रकट करने गया था अपने गांव, और हमारे गांव का सबसे बड़ा जो तालाब है वो हमारे गांव के मंदिर को 3 तरफ से एक तरह से घेरता है। बहुत बड़ा तालाब है भारत जी, उसमें से एक हिस्से पर कब्जा था, लेकिन तालाब प्राधिकरण को लगा के हमने उस सरोवर को बेहतरीन करवा दिया। माने तालाब प्राधिकरण ने पैसा खर्च किया, खुदाई हुई, पट्टी बनी उसके चारों तरफ, पेड़ भी लगे, कुछ कुर्सियां वर्सियां वो जो पत्थर की बैठने के लिए होती हैं वो भी वहां पर लगा दी गई। लेकिन आज जब मैं गांव में गया और उस तालाब के किनारे से गुजरा तो मैं ये देख रहा था कि पूरे तालाब को समुद्र शोक नाम की वो जो हरी बूटी रहती है उसने ढक रखा है, मतलब आच्छादित है, पानी नहीं दिखाई देता। तो अर्थ क्या है, सफाई नहीं हुई। दूसरा, सरकार ने बाड़ लगा दी थी, सरकार ने खुदाई करके चारों तरफ पटरी बना दी थी, सैर करना भाई यहां पर, बहुत सारे गांव में हो भी रहे। लेकिन गोंदर में हमने ये देखा, और एक अकेले उस तालाब की नहीं दूसरे तालाबों की भी बात है, कि जो पटरी बनाई थी, जो बाड़ लगाई थी, उस सबको नकार दिया लोगों ने और सरक करके कब्जे और सरोवर की तरफ, तालाब की तरफ लोग चले गए। तो यहां पर क्वेश्चन, मतलब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई साहब ये सरकार जो है ये तालाब प्राधिकरण पैरा देगा क्या आपके गांव के तालाब का? मेरे गांव के तालाब की अगर दुर्गति दुर्दशा है जितेश जी, तो आप थोड़ी आ सकते हो, और मैं तो कह रहा हूं मैं भी नहीं जा सकता, हर रोज मैं रहता नहीं साधारणतः गांव में। तो मेरे गांव के तालाब की संभाल की जिम्मेदारी मेरे गांव के समुदाय को लेनी पड़ेगी, और उसमें भी खास तौर पर वो जो तालाब के अगल बगल रहने वाले लोग हैं 3 तरफ 4 तरफ।
1: सर कॉल आ रहा है,
0: वो
1: कॉल आ रहा है
0: जी,
1: कॉल आ रहा है।
0: ये लोग, ये आसपास रहने वाले लोग जब आके भारत जी संभालेंगे तो तालाब शायद संभल जाएगा। कॉलर से जोड़ दीजिए भाई, कौन है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, मेरे यहाँ तो घंटी नहीं सुनाई दे रही।
1: नहीं, यहाँ सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं योगेश बाबा बात कर रहा हूँ, नीलोखेड़ी से।
1: जी बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं?
2: पहले डॉक्टर साहब को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से एक छोटा सा निवेदन, मैंने लास्ट लाइव पे भी किया था और अपील कर रहा हूँ, जहाँ पे डॉक्टर साहब की सरकारी कोठी है उसके साथ में ही एक पोल्ट्रिया का बहुत लंबी सड़क है जिसका निर्माण होना बाकी है, और जब भी अब चेयरमैन भी भाजपा के हैं, विधायक भी भाजपा के हैं और सरकार भी भाजपा की है, और वो सड़क लगभग 5 सालों से अधूरी पड़ी है।
0: नहीं, अधूरी पड़ी है, मैं क्योंकि मैंने एज सच उस सड़क को उस दृष्टि से देखा नहीं जब से मैं यहाँ आया हूँ। योगेश भाई, पिछली बार भी आपकी बात मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, सुन नहीं पाया था। मैं आपके शहर में 10-11 महीने से बसा हुआ हूँ, आपको फुर्सत नहीं मिली क्या एक बार भी आके मेरी संभाल करने की? आप मेरी संभाल कर लेते, मैं सड़क की कर लेता अब तक। तो मैं आपने जो मेरे पर उड़ाना देखे मारा है, मैंने तो टोकरी उठा के आपके सिर पे रख दी। अब
2: दो तीन बार आया हूँ अब आपके कार्यालय में, आपको बता के भी गया हूँ।
0: ऐसे नहीं होता ना भाई, ऐसे नहीं होता। आप सड़क के लिए कब आए बताओ, सड़क के लिए बात करने कब आए? जी यो
2: वार्तालाप हुई थी शाम के समय आपके ऑफिस में हुई थी,
0: मसला कुछ और होगा ना, करण कुछ और आए होंगे साथ में, सड़क सरकार के आप
2: इस सड़क का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया, चलना भी मुश्किल।
0: मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे सरकारी आवास के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, आप आए चाय पीकर जाएं और इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, कब ये सड़क आखिरी बार बनी थी। और जब आप, दो चीजें होती है, एक तो खराब हो रखी है, टूटी पड़ी है, बनी नहीं 5 साल से 8 साल से 10 साल से, ये स्थिति तो इसको कहते हैं जी सड़क बनी को नहीं। और एक होती है योगी भाई कि सड़क पे काम शुरू हो गया था जी, आधी बन गई, ठेकेदार बाज गया या पीछे खत्म हो गए, तो क्या स्थिति है इसका वर्णन करके जाइएगा। आपको, आप आ जाओ चाय पीने, कॉफी पीने,
2: ठीक है, और
0: इसका समाधान करेंगे, कार्यक्रम में जुड़ा करिए ऐसे ही जैसे आज जुड़े। बहुत धन्यवाद आपका। जी
1: वीरेंद्र सर, जितेश जी से और प्रीतम जी से पूछते हैं, क्योंकि कपिला जी की आवाज तो हमारे तक नहीं पहुंच रही है। जितेश जी से और प्रीतम जी से पूछते हैं कि वहाँ
0: हाँ जी आ रही है, कपिला जी की आवाज आ रही है। इन्हीं से जितेश जी और प्रीतम जी सवाल इन पूछ लें कपिला जी से। अब आ रही है आवाज,
3: जब फोन आ जाता है सर,
1: कॉल आ गया सर, कॉल आ गया सर, फिर
0: हेलो हेलो अभी जो हमारे कॉलर हैं, इन्होंने अगर कहीं फोन पे रेडियो चला रखा है या प्रोग्राम चला रखा है, इसको बंद करके सीधे हमसे बात करिए फोन पर और अपना परिचय दीजिए। कौन बोल रहे? भारत जी जरा संभालिए कॉलर को, कौन है, क्या कह रहे हैं
1: जी? कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, बताइए। तकनीकी कारण की वजह से उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। कपिला जी की जब आवाज आती है उस समय कॉल आती है। कपिला जी आपसे ही जानते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं, आपसे जानते हैं कि जो आपके गांवों में जोहड़ है कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनकी स्थिति क्या है, ये तो बताइए। अभी तक हमने आपसे कुछ भी नहीं सुन पाए जी। कपिला जी,
4: सर हमारे गांव में जोड़ दो हैं और दोनों नाम तो मेरे को पता नहीं है
1: जी, कोई बात नहीं
4: पर उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है।
1: वहाँ पर आपके गांव के
4: लोग, हमने उनको साफ भी करवाया है।
1: जी जी, सैर करने जाते हैं लोग वहाँ?
4: हाँ जी जरूर जाते हैं, पास में व्यायामशाला भी है, मंदिर भी है और स्कूल भी है सर, और वाटर वर्क सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द है, तो वहाँ की बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं।
0: अगर श्रोता जुड़े हुए हैं, फोन उठा रखा है तो भाई ग्रामोदय वालों बात करा दो हमारी। हेलो, कॉलर लाइन पे नहीं है। अच्छा, ये जो आपके दोनों तालाब है ना, क्या इनकी सफाई इनकी देखरेख आपने पंचायत के खर्चे से की है, तालाब प्राधिकरण से कोई पैसा आया है, कैसे संभाल होती है इनकी, जरा बताइए।
4: सर अभी पंचायत के फंड से हमने इनकी साफ सफाई करवाई है।
0: कॉलर साहब,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं जी?
5: हेलो, नमस्कार जी, मैं पलवल से बात कर रहा हूँ।
1: हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप?
5: मैं राजवी बात कर रहा हूँ जी, पलवल से।
1: जी राजीव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
5: जी हाँ सर, नमस्कार, राम राम हरियाणा।
1: जी
5: मैं इस शो के माध्यम से आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमीनी सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत चौराहे की परिक्रमा चल रही है, तो इस दौरान हरियाणा के जो तमाम गांव इस रूट पर आते हैं, वहां के आमजन और ग्रामीण तो अपनी तरफ से तन मन धन से श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि क्या हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान या प्रशासन की तरफ से इन ग्राम पंचायत को कोई विशेष बजट या अनुदान या प्रशासनिक सहायता जारी की गई है? डॉक्टर साहब, ये सवाल पूछना चाहता था।
1: जी डॉक्टर साहब,
6: सर ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्रिज कोस 84 की परिक्रमा जो है वो चली हुई है।
5: हेलो,
6: हमारा जो पलवल जिला है, पलवल जिले से जब हम 15-20 किलोमीटर मथुरा वृंदावन की तरफ चलेंगे तो होडल एक शहर सिटी पड़ता है जो आखिरी गांव है हरियाणा का, तो वहां से उसके बाद वो ब्रिज का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो लिसनर जुड़े हैं राजवीर जी, मैं इनकी बात को थोड़ा क्लियर कर दूं, शायद आप सुन नहीं पाए, ये जानना चाह रहे हैं कि ब्रिज कोस 84 की परिक्रमा हमारे यहाँ चली हुई है, ग्राम स्तर पर लोग अपनी तरफ से जो श्रद्धालु है, परिक्रमा देने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से सारा कुछ, अपनी तरफ से सारी सुविधाएं उनको मुहैया करा रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार का कोई ऐसा विशेष फंड है जो इन श्रद्धालुओं के ब्रिज कोस की 84 परिक्रमा पर खर्च करने के लिए हो, यही पूछना चाह रहे हैं राजवीर जी। आप राजवीर जी, आप हमें सुन रहे हैं?
0: लगता है राजवीर जी डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन उनका सवाल मुझे लगता है जितेश जी आपको और मेरे को दोनों को समझ में आ गया। जहां तक मेरी समझ है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड की व्यवस्था पंचायतों के लिए तो शायद न हो, लेकिन जिस जिले से होकर के ये यात्रा गुजरती है, मान लीजिए हम पलवल की बात कर रहे हैं, पलवल के जिस क्षेत्र से वो होकर गुजरती है, इसमें कोई दो राय नहीं, धार्मिक और आस्था का ये सवाल है, तो आस्थावान लोग अपने यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा शुश्रूषा संभाल उसकी चिंता करते ही हैं। और जब कोई ऐसी सार्वजनिक यात्रा कोई पर्व कुछ होता है किसी भी जिले में तो वहां का जो जिला प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी होती है वहां से उन जो तीर्थयात्री हैं उनकी संभाल करने की, माने उनको कोई असुविधा ना हो, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था रहे, उस रूट पर साफ सफाई की व्यवस्था हो और कानून व्यवस्था सुरक्षा जिसको कहते हैं उसकी भी चिंता करना वहां के स्थानीय जिला प्रशासन की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर राजवीर जी आपको ये लग रहा है कि कहीं इस यात्रा के अवधि में इन दिनों यात्रियों को कोई असुविधा विशेष हो रही है जिसमें लगता है आपको कि प्रशासन को दखल देना चाहिए, वहां के जिला प्रशासन को, वहां के उपमंडल अधिकारी को, वहां के उपायुक्त को या वहां के विधायक को, मंत्री को संबंधित, अगर आप कोई बात पहुंचाना चाहते हैं स्पेसिफिक तो वो आप हमें यहां भी बता सकते हैं और वो मेरे तक आप फोन करके भी मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी वो जानकारी दे सकते हैं। मैं वहां के स्थानीय प्रशासन के मित्रों से इस बारे में बात कर लूंगा और कोशिश करिए। कई दिन चलती है ये परिक्रमा ब्रज की जितेश जी आपको ध्यान होगा?
6: सर बिल्कुल, अभी ये चली हुई है और जेठ माह जो होता है, ज्येष्ठ माह यानी जेठ माह जिसको बोलते हैं, उसमें सारे में ब्रिज कोष की परिक्रमा होती है तो इन दिनों सर ये चली हुई है।
0: तो फिर अब की बार तो जेठ दो है, 60 दिन चलेगा मामला?
6: बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी भीड़ और काफी श्रद्धालु पूरे हरियाणा से श्रद्धालु जो
0: होते हैं। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, मेरी टीम नोट कर ले, ये सौरभ भी नोट करें, गुरविंदर सिंह भी ध्यान करें कि कल हम जो पलवल के जिस क्षेत्र से होकर के ये गुजरती है वहां के उपमंडल अधिकारी एसडीएम जो हैं, उपमंडल अधिकारी नागरिक, उनको हम टेलीफोन पर या लाइव में जोड़ के हम पूछ लेंगे कि वहां के स्थानीय प्रशासन ने क्या क्या किया है और कोई स्पेसिफिक बातें अगर आए आपके संज्ञान में, आप क्योंकि पलवल में हैं जितेश भाई, तो आप भी वो जानकारी वो सामग्री लेके रखिएगा। अगर वहां के उपमंडल अधिकारी आपके संपर्क में है तो आप उनसे बात कर लें, अन्यथा मेरा कार्यालय भी इस बारे में पहल करके और हम कोशिश करेंगे कि कल वहां के शासन का कोई ना कोई अधिकारी, क्योंकि यात्रा चल रही है, बहुत लोग आ रहे हैं तो वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे।
6: जी सर बिल्कुल,
0: तो कोई ना कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वहां का जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है इनमें से कोई ना कोई आएगा, जवाब देगा, हम पूछेंगे ना। कल पर छोड़ना पड़ेगा। कपिला जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। कपिला जी आप अपनी बात कहना शुरू करती हैं, इस बीच में कॉल आ जाती है, हालांकि ये बात अच्छी है, हमें तो आनंद आता है इसमें जी। और फिर कपिला जी का माइक्रोफोन म्यूट हो गया है, अनम्यूट करने के लिए की जिसकी भी जिम्मेदारी है भाई जी। कपिला जी
3: सर, पहले भी हम सिरसा मिले थे एक बार आपसे, तो आपसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे गांव में लाइब्रेरी और जिम की मांग की थी मैंने, तो आप उस पर गौर कीजिए, भी हमारे गांव में जिम और लाइब्रेरी तो पक्का ही होना चाहिए।
0: मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सरकार ने सब गांव से, सब खंड विकास और पंचायत अधिकारियों से ये पूछा था, सरपंचों से भी ये पूछा था कि आप अपने गांव में पुस्तकालय, ओपन जिम और सॉरी इंडोर जिम और महिला सांस्कृतिक केंद्र, इनमें से क्या बनाना चाहते हो। तीन चीजों का विकल्प दिया गया था और फिर ये कहा गया था कि तीन में से कोई एक का प्रेफरेंस दे दीजिए, प्राथमिकता पहले हम ये बनवाना चाहते हैं। फिर ये कहा गया था कि इनको हम इनके लिए नई बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, गांव में जो पहले से इमारतें पड़ी हुई हैं। भारत जी आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं?
1: नहीं सर।
0: जितेश जी को और
3: गोविंद जी को, हमारे गांव में बिल्डिंग है ही नहीं, छोटा गांव होने की वजह से वहां कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसमें हम लाइब्रेरी अपना शुरू कर सके। तो जिम मैं, वो तो हमारी गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, हमारे गांव के बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो उनको समस्याएं पैदा होती है, खासकर लड़कियों को, तो उसकी वजह से
0: आपके गांव में पुस्तकालय बने इस आशय का एक प्रस्ताव अगली ग्राम सभा में पारित करिए, वो पोर्टल पर भी चढ़ाइए, सभासार की मदद से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब पंचायत की ग्राम सभा की कार्रवाई आप दर्ज करते हो उसमें चढ़ाइए और हम पीछे पड़ के प्रयास करेंगे कि आपके गांव को पुस्तकालय बनाने का जो हरियाणा सरकार का सिलसिला चला हुआ उसमें कवर किया जाए। मैं फिर से अपने सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूं, अपने सभी प्रतिभागी मित्रों को बताना चाहता हूं, हरियाणा की वर्तमान सरकार ने ये तय किया हुआ है कि हम क्रमवार प्रदेश के हर गांव में एक ई पुस्तकालय बनाएंगे। हमारे यहां करीब 2000 ई पुस्तकालयों के निर्माण की प्रक्रिया वो किसी ना किसी स्टेज पर है। उनमें से 250 के लगभग पुस्तकालय पिछले दिसंबर माह में हमने लोकार्पित कर दिए हैं। शेष का काम तेज गति से चल रहा है। अकेले करनाल जिले में 1200 पुस्तकालयों पर काम लगभग पूरा हो चुका है। अभी मनोहरलाल जी आए थे, हमारे मंत्री भी हैं केंद्र में और करनाल के सांसद हैं, तो उन्होंने और गांव में भी पुस्तकालय खोलने की घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम करीब करीब 2000 पुस्तकालय, तो इस साल के बजट में ही टोटल 2000 तक इस आंकड़े को ले जाने का प्रावधान जहां तक मुझे याद आ रहा है मोटा सा वो है। तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और हमारे पंचायती राज के मंत्री श्री कृष्णलाल पवार जी, इन तीनों हमारी जो राजनीतिक विभूतियां हैं, इन तीनों का आग्रह इस बात पर है, तीनों का जोर इस बात पर है कि गांव में पुस्तकालय बनने चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकालय हरियाणा के गांव में बन गए हैं। हांडी खेड़ा की हांडी खाली नहीं रहनी चाहिए और हांडी खेड़ा की हांडी में भी एक पुस्तकालय उसके हिस्से आना चाहिए। कपिला जी हम सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे। और आप क्या देखना चाहते हैं अपने गांव में होता हुआ?
4: क्या सर?
0: आप अपने गांव में, आप अपने गांव में अगले 1.5 साल में जो आपके पास समय बचा हुआ है और क्या क्या अच्छा होते हुए देखना चाहती हैं?
4: हाँ जी हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
1: प्रीतम जी अगर आपकी,
0: अच्छा, मेरी आवाज,
1: प्रीतम जी अगर आपको आवाज मिल रही है आप पूछिए मैडम से क्या पूछना चाहते हैं।
4: हेलो
1: हेलो
7: मैडम, सर पूछना चाहते हैं।
1: एक मिनट
7: आवाज आ रही है मैडम?
1: हमारे साथ कोई कॉलर अगर है तो कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं प्रीतम जी पूछिए आप।
7: लगता है कपिला देवी जी का हमारे से डिस्कनेक्ट हो चुकी है नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण। भारत जी,
1: जी
7: और भारत जी एक प्रॉब्लम वो चला होता है पानी का समाधान। अभी अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, जो दादरी में पानी की कमी थी, एक जेई और एक एसडीओ आज सस्पेंड कर दिए गए हैं उस तक। ये अभी अभी आया कि पानी की इतनी कमी है दादरी में।
1: मतलब इसका मतलब है कि सस्पेंड तो तब हुई होंगी जब आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हुई होगी। पानी होते हुए भी अगर आपूर्ति नहीं हुई है तो ही तो वो दोषी बन सकते हैं।
7: ये अधिकारियों की कुछ लापरवाही होती है क्योंकि वो अपने दायित्व को अच्छे से निभा नहीं पा रहे।
0: इसको यूं कहिए ना फिर प्रीतम जी कि सरकार, शासन पानी घर घर पहुंचे, गर्मी में पानी की किल्लत ना हो, जल क्योंकि जीवन है, जीवन का आधार है, तो पेयजल की दिक्कत ना हो गांवों में। शासन इसको लेकर के सख्त है, प्रतिबद्ध है और जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में कोताही बरतते हुए दिख रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, नजर में आ रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ रहा है, निलंबन भी होगा और इससे आगे की कार्रवाई भी हो सकती है अगर किसी की चूक पाई गई। क्यों प्रीतम जी, ठीक कह दिए हैं हम?
7: हाँ सर।
0: चलिए कपिला जी आप बताएं आपके गांव में और क्या होते हुए देखना चाहते हैं आप?
4: सर जो आपने जोड़ के बारे में पूछा था, अमृत सरोवर के तहत 2021 में कच्चा कार्य हुआ था और अभी पक्का कार्य नहीं हुआ, उसे पूरा करने के लिए उसे पूरा करवाइए आप।
0: अमृत सरोवर के अंतर्गत क्या क्या हो गया था जब आप कह रहे हो कच्चा कार्य, क्या क्या हुआ था?
4: जोड़ का जो निर्माण है वो कच्चा है, खुदाई तो करवा दी गई पर उसे पक्का नहीं करवाया गया, न उसमें घाट वगैरह बनाए गए हैं।
0: चलिए
1: कपिला जी, सर एक मिनट कपिला जी, जो आपको ये जो उपदेश दे रहे हैं जरा आप उनको सामने लाएं, हम उनसे ही बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है।
8: नमस्कार सर
1: जो आप उपदेश उनको दे रहे हैं, ना हम आपकी बात सुन पा रहे हैं ना उनकी बात सुन पा रहे हैं। आप पहले तो आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? जी
8: मैं राजेश शुरान कपिला देवी का पति हूं सर। जी, तो वो सही बता नहीं पा रही थी
9: इसलिए मैं जोड़ के बारे में
0: इसमें इसमें शौरण जी जो करने का काम है, हमने चार बार एक बात कही आपसे इसी दौरान, क्योंकि जब आप उनके कान में बोलते हैं वो उनके कान में नहीं है, सारे हिंदुस्तान में जा रहा है विश्वभर में, तो या तो पहले से पूर्वाभ्यास करके कुछ तैयारी करानी चाहिए थी सरपंच साहिबा की। दूसरा ये कि जब बार बार हम कह रहे हैं तो आपको हमारी पुकार करनी चाहिए। अब जरा आप जरा पांच छह सवालों के जवाब आप ही दे दो, पूछिए भारत जी।
9: तैयारी तो नर्वस है, वो तैयारी तो है उनकी।
1: अच्छा मुझे एक बात, मुझे आप एक बात बताइए, आपके गाँव में जो जानकारी है, आपके गांव की तरक्की की जानकारी है, क्या उसके पटल आपने गांव में कहीं लगवा दिए हैं? जो पंचायत का इंडेक्स है, क्या आपने उसकी कहीं पर कोई पटल लिखवा के रखा है ताकि गांव में अगर कोई आए वो देख सकें कि इस गांव की उन्नति कितनी हुई है?
0: और इसको थोड़ा सा और साफ कर लूं सवाल को, पंचायत, सुनिए शोरण जी, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई, वो उसके बारे में सुना है आपने कुछ कभी? आपने सुना हो, सरपंच साहिबा ने सुना हो, पाई पाई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स?
9: नहीं सर, नहीं सुना, सूचना पट तो हमने सुना है, अभी ये काम हुए हैं वो हमारे गाँव में लगा हुआ है।
0: आप अपनी बीडीपीओ से, आप माने मैं ये मेरा ये जो मैं कह रहा हूँ बात, ये सरपंच साहिबा के लिए, कपिला जी के लिए है, कपिला जी को और उनकी पूरी पंचायत को अगले 7 दिन के अंदर पंचायत में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, किस लिए है, क्यों और कैसे उसका उपयोग करना है, इसकी जानकारी अर्जित करनी चाहिए और हमें बताना भी चाहिए। आप हमें भी बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप पे इसकी जानकारी देंगे तब बात बनेगी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लेकर हरियाणा के गांवों के पंचायतों की जो सचेतता है वो तो भाई वही है जो दिख रही है, सब कुछ यहाँ तो सबके सामने है, कुछ छिपा हुआ नहीं है।
1: इसीलिए
0: आज तक जितनी पंचायतों को भारत जी आपके कार्यक्रम में जोड़ा गया है, एक कल वाले सरपंच को छोड़कर किसी में किसी का इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वो ये कह दे कि हाँ मैनू पता है की होंदा है पाई, और मुझे पता भी है और मैंने पाई चार्ट अपना वो गांव में उसको डिस्प्ले पर भी रखा हुआ है, उसको कहीं फ्लेक्स बनवाकर या पेंट करवा के लगाया भी है। तो कम से कम हांडीखेड़ा की ग्राम पंचायत अपने ग्राम सचिव को बुलाए, संबंधित अधिकारियों से पूछे, बीडीपीओ से ले ज्ञान ले, कुछ गूगल करे, लेकिन गांव की सरपंच को और उनके सारे सहयोगियों को ये पता होना चाहिए कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स नामक एक सूचकांक है जो आपके गांव की तरक्की का पैमाना है, मापक है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स से देखते ही पता चल जाता है कि आपके यहाँ आप तरक्की के कौन से पायदान पे खड़े हो, समझ रहे हो ना? तो अगर आपको पता ही नहीं कि ये सौदा के है तो फिर मैं हमने यूं कहना पड़ेगा सौदा है किमें नहीं तो कहना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं हांडीखेड़ा वाले पीछे रह गए। तो इसको जरा दुरुस्त करिए। और मैं ये चाहूंगा आप ग्राम सभा की बैठकों को नियमित रूप से करिए, ग्राम सभा की बैठकों को कागजों तक मत समेटिए, और कपिला देवी जी को गांव की वास्तविक प्रधान बनाइए। कपिला देवी गूंजनी चाहिए गांव में। मिस्टर शोरण उनके असिस्टेंट हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन कपिला जी की चलनी चाहिए घर में भी और गांव में भी।
9: ठीक, थैंक यू सर, ओके।
1: मैं आखिरी कुछ समय हमारे पास, मैं कपिला जी को ये कहना चाहता हूँ कि कपिला जी आपको सामने आना होगा, आपको बात करनी होगी। आज के हिंदुस्तान में, आज के भारत में महिलाओं का योगदान हर जगह पर बढ़ रहा है, अगर आप सामने नहीं आएंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप सरकार के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, तो आपके गाँव में जो विकास होना है उसमें कमी होगी। जी जितेश जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे?
10: बिल्कुल सर, हमारी हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार, हमारी आधी आबादी जो है हरियाणा सरकार की, हम अपना केंद्र सरकार की बात करें तो पंचायती राज में 50-50% सीटें जो है वो महिला और पुरुषों के लिए आरक्षित है। साथ ही उनकी क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भी इतना शिक्षित होना जरूरी है। तो शिक्षित पंचायत और शिक्षित महिलाएं आगे आएंगी तो नो डाउट भारत ही गांव विकास करेगा। और जब सरकार आप लोगों की नेता कर रही है तो आप भी थोड़ा आगे बढ़े और अपनी चीजों को सशक्त करें।
1: जी कपिला जी कुछ कहने वाली थी, कपिला जी आप बताइए।
3: सर मैं अपना काम खुद करती हूँ, ये बात नहीं है भी अकेले यही करते हैं, इनके साथ भी जाती हूँ और ऐसे मुझे पता है। बस थोड़ा सा पहली बार होने की वजह से थोड़ा सा नर्वस हो गई, बाकी आप फेस टू फेस बात कर सकते हो मेरे से कभी भी, मैं सर से काफी बार मिली हूँ।
1: हम चाहते हैं कि आपकी आवाज,
3: मैं पंचायत में मिल चुकी हूँ पहले,
1: हम चाहते हैं कि
3: मैंने काफी बात की थी, हमने सारे कुछ बताया भी था भी गाँव में ये कार्य हो रहा है। और
0: कपिला जी नर्वस हैं आपके दुश्मन, आपको नर्वस नहीं होना। हाँ नर्वस हैं आपके दुश्मन, आपको काहे को नर्वस होना है। मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में अगर भारत जी मुझे इजाजत दें तो एक दो चीजों का जिक्र करवाना चाहूंगा कल, क्योंकि मैं कार्यक्रम में नहीं था।
3: जी कपिला जी आप कह लो, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें इस पर हमें स्टूडियो में बुलाया गया, और राधेश्याम जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें मौका दिया इस यहाँ आने के लिए।
0: चलिए राधेश्याम जी तो खुद आए नहीं, राधेश्याम जी को फोन पे जुड़ना चाहिए था आपको बुला के, और वो खुद पता नहीं कहाँ गायब हैं। अच्छा रहता राधेश्याम जी जुड़ते। तो मैं चलते चलते 5 बज गए हैं, कार्यक्रम को संपन्न करना है। मैं आप सबके साथ ये 2-3 बिंदु छोटे छोटे से साझा करना चाहूंगा। कल मुझे मौका नहीं मिला ये बात कहने का, आज तो कहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 26 तारीख को शपथ ले रहे थे, और आप ये कह सकते हैं कि आज जो है उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला संपूर्ण कार्य दिवस था, क्योंकि शपथ हुई थी शाम को 6:15 के बीच में, और 27 से उन्होंने कायदे से अपना काम करना शुरू किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी टीम को, उनकी सरकार को, आइए उनके कार्यकाल के 12 बरस पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज का जो दिन है उसकी भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें ध्यान में होनी चाहिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था आज के दिन, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अमेरिका के प्रमुख राजनेता हेनरी किसिंगर, उनका उनका भी आज जन्मदिन है, और उनको भी हम स्मरण करते हैं आज के दिन। 1999 में इन दिनों चल रहा था कारगिल में युद्ध, और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर आज ही के दिन प्रारंभ किया था। और इन्हीं दिनों में जो जिन दिनों में हम और आप बात कर रहे हैं, 1930 में दिल्ली में प्रसिद्ध जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, 1930 में भगत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा जो है वो और तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। आज से आज के दिन से जुड़ी कुछ स्मृतियों पर चर्चा के साथ भारत जी, आइए कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। और कार्यक्रम को संपन्न करते हुए इस आशा और उम्मीद के साथ कि कल गुरविंदर जी जब नए मेहमान के साथ हमारे साथ होंगे, तो आज जैसी स्थिति, जैसा कैमरे को लेकर हुई, जैसा चर्चा को लेकर हुई, वैसी न हो, आधा घंटा पहले भी अभ्यास शुरू करना पड़े तो आप जरूर करें। कार्यक्रम में, कार्यक्रम को संचालन करने में मदद करने के लिए भारत जी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रीतम जी, जितेश जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आपका आभार। और फोन पर हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में जोड़ने में मदद करने के लिए
1: जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रेडियो ग्राम जी जी शुभम के उत्तराधिकारी संगम का आभार व्यक्त करना बनता है। तो मेरी ओर से तो भारत जी राम राम, और औपचारिक रूप से कार्यक्रम को विराम मैं चाहूंगा कि आप ही दें।
1: राम राम हरियाणा, और सभी को मैं ये कहता हूं कि कल नई ऊर्जा और नई सोच के साथ कल मिलेंगे शाम के 4 बजे। राम राम हरियाणा,
0: तब तक के लिए सबको राम राम।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंदीदा।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reacts.

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम गायक महेंद्र कपूर पर आधारित है। पेश करेंगी RJ किरणी।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। आज का ये खास प्रोग्राम हमारे सबके प्रिय सिंगर महेंद्र कपूर जी को समर्पित है। महेंद्र कपूर जी ने अपनी सुरीली आवाज से हमें कई यादगार गाने दिए हैं, जो आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महेंद्र कपूर के गानों का ये सफर।

महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। गायकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने जल्द ही अमृतसर से मुंबई का रुख लिया। बचपन से ही महेंद्र कपूर महान गायक मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित थे। वे एक तरह से मोहम्मद रफी के शागिर्द थे और उनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। शायद यही वजह है कि कई बार उनके गानों में, खासकर शुरुआती दौर के उनके गानों में, रफी के प्रभाव की साफ झलक मिलती है। उनकी दिली इच्छा थी कि वे हिंदी फिल्मों में गाएं। शुरुआत में महेंद्र कपूर ने शास्त्रीय संगीत की तालीम प्राप्त की थी। उनके जीवन में प्रमुख मोड़ उस समय आया जब उन्होंने मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया गायन प्रतियोगिता जीत ली। 1957 में हुई इस प्रतियोगिता के जज संगीतकार नौशाद अली थे, जिन्होंने फिल्म सोहनी मेवाल के गीत चांद छुपा है और तारे डूबे को महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनको वी शांताराम की फिल्म नवरंग में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने आधा है चंद्रमा रात आदि गीत गाया, जो कि कामयाब रहा। सी रामाचंद्रन के संगीत से सजे इस गीत ने महेंद्र कपूर के पांव फिल्म जगत में मजबूती से जमा दिए।

महेंद्र कपूर अपने स्कूल के दिनों से ही रफी साहब के साथ थे। उस समय रफी साहब इंडस्ट्री में सबसे बड़े नामों में से एक थे। रफी साहब और महेंद्र कपूर के बीच रिश्ता कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो मोहम्मद रफी की कहीं किसी भी बात को मानने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार रफी साहब ने महेंद्र कपूर से कहा था कि हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज मिलती है। उस दिन से ही दोनों ने कभी साथ गाना नहीं गाया। दोनों ने सिर्फ 1968 में आई फिल्म आदमी का गीत कैसी हसीन आज बहारों की रात है, इस गाने में दिग्गज संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर महेंद्र कपूर ने तलत महमूद साहब की आवाज को डब किया था। ये गाना पहले रफी साहब और तलत महमूद को गाना था, लेकिन किसी वजह से गाने में तलत महमूद वाले हिस्से को नए गायक के साथ डब करना पड़ा और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री रफी साहब और महेंद्र कपूर ने साथ में अपना पहला और एकमात्र गाना गाया। दोनों के बीच हुए इस पूरे किस्से का खुलासा महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर ने किया था।

इसके बाद उन्होंने भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार और बी आर चोपड़ा के बैनर तले बनी अधिकतर फिल्मों के गीतों के लिए भी आवाज दी। एक समय महेंद्र कपूर की आवाज भारत की जीवंत आवाज कहलाती थी। देशभक्ति गीतों का ख्याल आते ही सबसे पहला नाम उनका ही आता था। लेकिन चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए और किसी पत्थर की मूरत से गाने के उनके गानों में विविधता प्रदर्शित हुई। इसके अलावा वो पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने कई अंग्रेजी गाने रिकॉर्ड किए। यही नहीं, महेंद्र कपूर ने लगभग सभी भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गाने गाए। कई गीत जो उन्होंने गाए वो सदाबहार हो गए। उनके गानों की दीवानगी ऐसी कि देश ही नहीं विदेशों में भी लोग उनके गीतों के कायल थे। जिस फिल्म इंडस्ट्री में रफी, किशोर और मुकेश जैसे बड़े नाम थे, वहाँ खुद की एक अलग पहचान बनाना शायद महेंद्र कपूर ही कर सकते थे। महेंद्र यूं तो रफी का अपना गुरु मानते थे, लेकिन रफी के कहने पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत की सीख ली और उसे बखूबी अपने गीतों में उतारा भी।

70 के दशक में महेंद्र कपूर बेहद लोकप्रिय थे। मनोज कुमार के लिए उनके गाए देशभक्ति गीत आज भी लोगों के दिलों में बेहद करीब है। प्रीत जहां की रीत सदा हो या मेरे देश की धरती, इन गानों ने देशभक्ति की भावना की जो नींव रखी वो आज भी कायम है। आज भी हर भारतीय जब इन गानों को सुनता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ आता है। महेंद्र कपूर को मनोज कुमार की आवाज भी कहा जाता है। मनोज कुमार ने खुद को जब दर्शकों के सामने राष्ट्रवादी नायक की भूमिका में पेश किया तो उनके इस छवि को पुख्ता करने का काम किया महेंद्र कपूर की आवाज ने। महेंद्र कपूर को 1968 में उपकार फिल्म के सदाबहार गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वैसे तो महेंद्र कपूर के जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन उनके कुछ किस्से बेहद मशहूर हैं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रोग्राम सुनहरे पल जारी है। महेंद्र कपूर को हर मूड का गीत गाने वाला समझा जाता था। वो किसी भी तरह के गीत को बेहद ही सरलता और गंभीरता के साथ निभाते थे, चाहे वो देश में सबसे ज्यादा बजने वाला देशभक्ति गीत हो, या धर्म अधर्म की सीख देते महाभारत के गीत, या फिर प्यार में डूबे किसी प्रेमी के दिल की आवाज, या जिंदगी की कश्मकश में धीरे किसी शख्स के दिल की आह। हर गीत को हर तरीके गाने की कला था महेंद्र कपूर के पास। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीतों में आज भी वो जादू है कि उन्हें सुनते ही हर कोई उनकी आवाज को खुद की समझ गीत गुनगुनाने लगता है।

हमेशा मस्त नगमे सुनाने का वादा करने वाले महेंद्र कपूर अगले कई दशक तक संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज से मोहित करते रहे। उन्होंने जब फिल्मी जगत में पदार्पण किया वह हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण काल था और पार्श्व गायकी में मोहम्मद रफी, मुकेश कुमार और हेमंत कुमार को टक्कर दी और उनके बीच राह बनाना कोई आसान नहीं था। ये एक कठिन चुनौती थी, लेकिन दुनके पक्के और पुरुषार्थ से बड़े कपूर ने न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि पार्श्व गायन की विविधता को नए आयाम भी प्रदान किए।

बी आर चोपड़ा से उनका साथ टीवी धारावाहिक महाभारत में भी रहा। धारावाहिक महाभारत के शीर्षक गीत को महेंद्र कपूर ने ही स्वर दिया था। धारावाहिक के प्रारंभ से ही महेंद्र कपूर की आवाज से सजे श्लोक आदि दर्शकों को टीवी के सामने बांधे रखने में बहुत सफल हुए। महेंद्र कपूर ने दादा कोंडके के लिए उनकी अधिकतर मराठी फिल्मों में भी गीत गाए। उन्होंने सी रामचंद्रन और पी नायर, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे विभिन्न संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी विशेष जोड़ी रवि के साथ बनी। उन्होंने रवि के साथ मिलकर कई हिट गीत दिए। इन गीतों में चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, नीले गगन के तले, तुम अगर साथ देने का वादा करो और किसी पत्थर की मूरत से आदि गीत शामिल हैं।

अपने लंबे कैरियर में महेंद्र कपूर ने कई पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1968 में उपकार फिल्म के गीत मेरे देश की धरती के लिए महेंद्र कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1964, 1968 और 1975 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देश विदेश में उन्होंने अनेक चैरिटी शो किए। सुनील दत्त और नरगिस के साथ सीमा पर तैनात फौजी जवानों के लिए उन्होंने कार्यक्रम दिए। भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री प्रदान करके इस गायक का मान बढ़ाया। 27 सितंबर 2008 को 74 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से महेंद्र कपूर का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनके सदाबहार नगमे कानों में मिश्री गोलते हैं। आज भले ही महेंद्र कपूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां उनकी आवाज का जादू हमेशा बना रहेगा।

ये था आज का सफर महेंद्र कपूर के साथ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।

सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 4। आज का कार्यक्रम आधारित था गायक महेंद्र कपूर पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
3: You are listening 90.0 FM, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दोस्तों खुश आमदीद, सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे लौटता है कोई मखमली मौसम और हरा होता है जंगल, जैसे पूनम का चांद आकाश से उतर आया हो, जैसे बुलबुल शबनमी बूंदों में नहा रहे हो, जैसे इस खामोश वादी में फरिश्तों की बारात आई हो, जैसे इस वीरानी के पत्थर आज कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे यहां ये पागल हवाएं अपनी फरियाद लिए खुद से मुखातिब हैं, वैसे ही जब जब दिल हमारा धड़कता है तुम हमारी यादों में शामिल हो जाते हो।

ढूंढे मील के पत्थर को और फिर छू ले उसे। मैं तुम्हारे कदमों को नाप लूं अपनी उंगलियों से, कुछ फासले रहने दूं और कुछ मिटा दूं। शायद ये बचे फासले मुझे तुम्हारे करीब आने को कहें, ताकि मैं इन्हें अपना कर आने वाले कल के सपनों को साकार कर सकूं। तुम्हारा आंचल मखमली उम्मीदों से भर दूं। आओ आओ चले दूर तक, वहां तक जहां जमीन और आसमान का मिलन हो अपनी तमन्नाओं के साथ।

परेशान यूं ही बिखरा बिखरा अपने अतीत को याद करता, अपनी परछाई से कई बार सवाल करता, रूहों के सफर के रहस्य को जानने की कोशिश करता। वक्त से पहले जो लोग चले जाते हैं उनके अपनों के दुख में शामिल होना, कुछ ऐसे एहसासात, कुछ ऐसे जज्बात जो मेरे साए को घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं और नोच लेते हैं।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर। दोस्तों,

तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को नजदीकियों में तब्दील करने की कोशिश करें, फिर से इस खामोश पानी में पत्थर फेंकें ताकि इन लहरों का मिलन साहिलों से हो। आओ इन बादलों को अपनी मुट्ठी में कैद करें और फिर से पहले ही की तरह बारिश में भीग जाएं। मैं तुम्हारी हथेली में अपना अक्स ढूंढ लूं ताकि अपनी बिखरी सूरत संवार सकूं। आओ हम दोनों आज ये अहद करें कि नहीं बिछड़ेंगे फिर से कभी, और तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहें।

जी आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:34। कल 28 मई 2026 बृहस्पतिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं पूरे दिन के लिए, वो इस प्रकार है। 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होती है वंदे मातरम से, और लाते हैं आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और 7:05 पर होगा कार्यक्रम युवाओं का, युवा ही देश का भविष्य। हमारे साथ होंगे श्रुति सयाल, पेश करेंगे भारत सोपोरी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है, एपिसोड 6 होगा जीने की राह, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 होगा कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 16, कल का विषय है वफा, पेश करेंगे आरजे किडनी। और 10:25 पर होगा कार्यक्रम दोस्ती अनमोल, एपिसोड 2, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी, और 2 बजे आपको बृहस्पतिवार को हम आपको सुनाते हैं साइबर अपराध के अलर्ट के बारे में एपिसोड्स। तो कल 2 बजे आप जरूर सुनेगा साइबर अपराध अलर्ट पर हमारा नया एपिसोड। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल, और 7 बजे कार्यक्रम सुनहरे पल, एपिसोड 8, कल का कार्यक्रम है शैलेंद्र पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। और कल की कड़ी है काश फुर्सत होती, कल की कड़ी है माफ कीजिएगा मुझे ले चलो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे, अपनी फरमाइशें भी भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब आज के लिए अपने रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दें, और बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें। कल सुबह 5:58 तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।